घर बजाने लगाओ तू फोन बात तू कहाँ मेरे गाँव जा दूर कितना मैं यहाँ मैं यहाँ चार चार